0: तुम गवाह भी।
1: आनक एच यार मतुरी रदिमान फिसमान अरेक प्यून मास तिन तानक युंदान दाद तिमान रुचुरुच फैने ने फट्रुटग न तंब्री ख्यान चेओ आरे फसक पुटग नुन्य बेन याव जानन कसाव लाइना बेन तानन रामजुन गुन्ना आज तो मनाई चनाओ फच मुंबनाओ कूर जो वे देश के तुझो सौर का जन्रिया मन्त रच फटतो कूर जे अले निफ सैना नजे याद निफ्याईना को फेन जावा मिफमा मीला चाई ताकतूर ए फंतोना मार जो सुफन्याफनाम नौ जान जाम फुमारे ने मिर्चेर चौन साइन सिम्तेत क्या न्यासा मनुक निमस्वां उसा काफ्च चैनी ना दवे इन रै मां नेफ न्युफनिसारेत नितातेरा गवा जंबूला नुटुसाक तातोची निश्यान मांच वूला तो अंपेला ताना चिक्या नुकेंदिना चीपिक नेफ लासंदे नौ इवद्याना तापादांबा अनपेना नतुलुगो आर न्यांबु नुन्यांगांबु रा मिस्त्याताओ अकांजो नतुमुवानाओ फामा मीर फीर लोट तिर्रिन चिकती नेफ एच मतुल फा दलाना न्यांदाल रेसा कुल नेफा लानाग कन्याद सैन राय नुएत न्यापतुर जानाग चिकता मूर सुमनाइक फिफ म्याद बेन सैक राम पिछुच न्याज इफिनरतान न्यातो वारत कई जानु कारमाइन मेतु जिता निन कारत कांजो रेकुनाई जो फान लाला नुसकाना ना राम पिछु वमाराइन इस मांच फितु कान ना तो कई चिक्या आत कनिसा रेत जे मांदे दे अविल्या वकुफा अंदानु रेलेबे अर्जेले मावु सद मावक फूनी पटुंग ताकने फतो मार नीटा केटा का तुंगा तुंगा फुच नियन का दे मार केटा केटा नेफ एच मतुरी मिकिपी का मिकिपी आराज में ना चीन दादा सिन रेड रेडन फिर फतफालू उठा लोट न्यायास टेब टेब यूंडा ना सुबनाइन ये तो पुकु बेटा राइन
0: Shout out to Mkula, shout out to

0: क्लास तुम कफा भी
1: तीम ने रसोम निपकाल तपकतिमंदीकेल तपकतिमंदीकेले झीरका सारे नाम लाभ सो ओम कॉम्प्लेक्स सो फिला आरंभे फमी सऊता का फोका फाउल फितुना चीरा मान तुकु पीन पीछे
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukufafi.

0: तुम क्लास तुम कुफा भी
1: तान बारी उल्फतीन मामा ना यू करा मंजैसन मामा ना उल्फतीन ने न्यू तम मिला ने संतरां ट्वीट अने फसीती औरी ना मिशन तुपुन शेहु मानगं तान कते मना वास्वाफ़ हमने रुफ्तुन संसकान गए थे तो फ़ंगो लिपेनी रेपिप्ली के महितूत के तीम नाइ मतीन शॉट एम शॉट तुपुन रेव ने भी साइटी मनाइ आरो पीतरो मिंसन उम शिरशिर एम न्यू ने वच्चे ना जुफा नाइ मिशाक तो तिफ़ात मज़ाबतार फ़ंगतान न तोड़ शरे ओ मेओ हनाप ने जारा नाइ Ane fara tap ni kita ni cerai kai kita kai kita ceraran. Saya tahu anai rahuna nai sahai. Saya tiri saya rumah nambul. Cuma naik sahai, cuma naik sahai tumpko. Usambur nai sahai urahunan. Ukatain. Saya tiri semua nambul ape. Cekai nai san tumpko.
2: Dan ane lele partaja tiga jam firnam nai tateraka. Nitan nai ane ban. Defan firnam nai le pavion defa. Tunggu temisha panambula tapi aku faham siapa nafita titra purne titre amnu meletan nevan tanta onatun rumbi fulltone ni atina possible untuk nihiswe hafita purne titre harutan yuk komplisen saya misha pronotation ane mni domain tanta jomi dia matu misan sesawat saya fumbawan zane nafita purne titre endu
3: pronotation koma faham petak aku sehe se jomi di iti tane to tan fuskatrati Tenefa bulan ini senfart, tengahnya orang atun filem afnart. Tiup filem afnart juga, na fad kena kehcina, na tonsu na tulj. Iye, na tonsu na tulj de, sesan roh fahan rom sar sar, niasa na roh fitaran. Etom ni fartan fana rasuan, embar tungga paya fana rehet. Armia sana prestar rasuel, baik cerca gentis abertis.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufa.